0: वेलकम बैक. द पॉलिटिक्स ओवर श्री राम मंदिर चंदा चोरी हैज एस्केलेटेड. अ मैसिव कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी एंड द ऑपोजिशन समाजवादी पार्टी. रिमेंबर उत्तर प्रदेश विल सी इलेक्शंस इन 2027. द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट इन द स्टेट सेज दे हैव अरेस्टेड the accused in this case. There is an investigation that is underway. The SIT probe will reveal more details and further action will be taken. But the opposition is demanding greater transparency and accountability. So at Panchayat Aaj Tak Uttar Pradesh, UP Chief Minister Yogi Adityanath and Deputy Chief Minister Brijesh Pathak, other BJP leaders and of course opposition voices, they laid bare their positions on the controversy. We get you more in this report.
1: The alleged theft of Ram Mandir donations has now moved beyond an investigation, becoming a major political flashpoint in Uttar Pradesh. At Panchayat Aaj Tak, the biggest names, the sharpest questions and the biggest political flashpoints came face to face. At the conclave, Chief Minister Yogi Adityanath defended his government's action, highlighting the formation of an SIT and the arrest of accused persons.
2: SIT ki report aate hi trust ne karwai bhi shuru ki. Jo 6 log visual mein chori karte hue pakde gaye, unki giraftari hui, jo unme sahyog kar rahe the unki giraftari hui, aur giraftari hone ke sath hi नैतिक आधार पर भी दो स्थिति और हुई.
1: But the political battle intensified as Chief Minister Yogi launched a direct attack on opposition, accusing earlier governments of disrespecting Hindu Aastha time and again and questioning their stand on Lord Ram.
2: जिन लोगों ने हर स्थिति में राम मंदिर का निर्माण न हो उस मुद्दे पर हर प्रकार से बाधा और बैरियर लगाने के प्रयास की, अपने अधिवक्ता खड़े किए राम मंदिर के विरोध में, आज वे आस्था की बात कर रहे हैं.
1: Deputy Chief Minister Brijesh Pathak reinforced the government's position, saying accountability will be fixed and no guilty person will be spared.
3: जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी, कानून के तहत होगी और कोई बचेगा नहीं. और भविष्य में न हो उसकी सरकार व्यवस्था कर रही है. और ये ट्रस्ट का काम है. ट्रस्ट ने FIR के लिए निवेदन किया, FIR हुई, जांच चल रही है और कोई भी दोषी बचे ना, ये सरकार का दायित्व है.
1: The Uttar Pradesh BJP chief said devotees' sentiments have been heard and assured that no one, big or small, will be protected.
4: हमारे जो सनातनी हैं वो भी जानते हैं कि हम सब ने, हमारे दल के बहुत से लोगों ने कुर्बानी देकर राम मंदिर का निर्माण कराया है और हम ऐसा कभी नहीं होने देना चाहते हैं ना होने देंगे कि मंदिर के अंदर कोई भी चंदा में घोटाला हो और जो हुआ है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई मिले. उसके पीछे हम लोग कहीं भी उसको बचाने का काम नहीं करेंगे.
1: बीजेपी ally अनुप्रिया पटेल echoed the same message that the guilty will face strict action.
5: सबको मिलकर इस पर जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. इस दिशा में एक SIT भी गठित हुई है. SIT ने अपना काम किया है. अभी उनकी रिपोर्ट अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो सजा के हकदार हैं, सजा पाएंगे भी और लोगों का जो एक विश्वास है वो पुनः कायम होगा.
1: But the opposition sees the issue differently. Leader of opposition in Uttar Pradesh Assembly, Mata Prasad Pandey, questioned the government over transparency and accountability.
6: 2024 से 2027 जो अगले साल चुनाव होगा, यूपी बदल गया है. आप नहीं मानते?
7: हमने, हम बाप को बता दें, रूप बदला है, हमारा आग्रह बढ़ा है. भगवान प्रभु श्री राम इनसे नाराज हैं. उन्होंने पहले शुरू में ही इनको समझा दिया जब प्रभु श्री राम की सीट हमारे पार्टी के हक में चले आई और हमारे पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को वहां से जिता दिया. अब इनको एहसास नहीं हुआ इनका ग्राफ कहां जा रहा है.
8: जब से ये ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट ने जब से जमीन एक्वायर की, 2-2 करोड़ की जमीन 1.5 घंटे 45 मिनट के अंदर सेम डे और सेम गवाहों द्वारा 24 करोड़ में ट्रांसफर की गई है. और ये पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये पैसा उन तमाम राम भक्तों का था जिनके जज्बात थे कि भगवान प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बने.
1: The Congress also targeted the BJP, questioning whether all those linked to the case, including individuals associated with the RSS and BJP, would be subjected to investigation.
9: Chadhawa chori pe kya bolegi Bharatiya Janata Party? Chanda chori par kya bolegi Bharatiya Janata Party? Inke log shamil hain usme. Bhagwan Ram ke naam par aaye aur Bhagwan Ram ke naam par ye jayenge. Aapne chote logon ko bhej diya Tillu Yadav kon kon aur kisko kisko bhej diya aapne Mishra ji ko. अरे भैया चंपत राय बंसल कब जेल जाएंगे योगी जी अनिल मिश्रा कब जाएंगे
1: The Ram Mandir Chadhawa controversy has now become a test of accountability and political credibility. With the SIT probe underway, the issue is likely to remain a key talking point as Uttar Pradesh heads towards the crucial 2027 electoral battle. Bureau Report, India Today.

आप यूपी के अंदर आज एक संतुष्टि का लेवल पाते होंगे, अगर सरकार के स्तर पर तुलनात्मक रूप से आप कोई भी बात पब्लिक के सामने कहेंगे कि 2017 से लेकर 2026 के बीच इन 20 वर्षों के ही, या 2003 से लेकर के 2026 के बीच इन 23 वर्षों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाइए, पहले 4 साल मुलायम सिंह जी के, अगले 5 साल मायावती जी के, अगले 5 वर्ष अखिलेश जी के, और फिर पिछले 10 वर्षों से लगभग 9, सवा 9 वर्षों से हमारी सरकार है, इन सभी को लेकर के इस रिपोर्ट कार्ड को एक बार पब्लिक के सामने आप जाएंगे तो पब्लिक से इस रिपोर्ट के बारे में, संतुष्टि के लेवल के बारे में आप पूछेंगे। आज सरकार के पास नीति भी है और उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति का की नियत भी है। हमने संकल्प किया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, माफिया मुक्त करेंगे, कर्फ्यू मुक्त करेंगे, दंगा मुक्त करेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति थी, हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतार कर दिखाया कि हां, देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, कर्फ्यू मुक्त हो सकता है, उपद्रव से मुक्त हो सकता है और अपनी परंपरागत पहचान उत्सव से युक्त हो सकता है। ये यूपी ने करके दिखाया है 9 वर्षों में।

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: CP Plus, ऊपर वाला सब देख रहा है।

0: This is the sound of Lucy, staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: चीजें बदली हुई नजर आएंगी संसद के अंदर, आपकी कितनी तैयारी है इस पर?
4: जैसे देखो, मैं 17-18 साल हो गया सांसद हूँ और राजनीति में 40 साल से भी ज्यादा हूँ, तो जैसे तैयारी होते हैं वैसे ही चल रहा है। और कौन कौन बिल आएगा, क्या क्या वक्त मिलेगा हमें बातचीत करने के लिए, हम उसके बाद ही तैयारी करेंगे।
3: पश्चिम को बहुत महत्वपूर्ण बिल आने की बात चल रही है, हो सकता है कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का बिल भी आ जाए, पहले भी आया था। जब आता है महिला आरक्षण का, तो आप समर्थन करेंगे सरकार का?
4: महिला के साथ हम सब हर वक्त है, महिला को तरक्की हो, शिक्षा में, सुरक्षा में, तरक्की में, और हम देखते हैं कि यहाँ भी जो केंद्रीय सरकार है महिलाओं के लिए काफी काम कर रहे हैं। हमारे राज्य सरकार अन्नपूर्णा भंडार से काफी काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ ही रहेंगे।
5: वी विल कंसिडर प्रोवाइडेड, कंसिडर इंग्रेजी में रिपीट करती है, कंसिडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क।

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: की ऐप से बैंक के सारे काम
4: यू
5: सोच बदलो और बैंक भी
6: बड़ा सत्र है इस बार कहीं ना कहीं चीजें बदली हुई नजर आएंगी संसद के अंदर आपकी कितनी तैयारी है इस बार
7: जैसे देखो मैं 17-18 साल हो गया सांसद हूँ और राजनीति में 40 साल से भी ज्यादा हूँ तो जैसे तैयारी होते हैं वैसे ही चल रहा है और कौन कौन बिल आएगा क्या क्या वक्त मिलेगा हमें बातचीत करने के लिए हम उसके बाद ही तैयारी करेंगे
6: पश्चिमों को बहुत महत्वपूर्ण बिल आने की बात चल रही है हो सकता है कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का बिल भी आ जाए पहले भी आया था जब आता है महिला आरक्षण का तो आप समर्थन करेंगे सरकार का
7: महिला के साथ हम सब हर वक्त है महिला को तरक्की हो शिक्षा में सुरक्षा में तरक्की में और हम देखते हैं कि यहाँ भी जो केंद्रीय सरकार है महिलाओं के लिए काफी काम कर रहे हैं हमारे राज्य सरकार अन्नपूर्ण भंडार से काफी काम कर रहे हैं हम भी उनके साथ ही रहेंगे
8: वी विल कंसीडर प्रोवाइडेड कंसीडर इंग्रेजी में रिपीट करती है कंसीडर सपोर्टिंग इफ द 50% कैप इज टू बी डिस्कस्ड एंड द बिल हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क
9: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

आप यूपी के अंदर आज एक संतुष्टि का लेवल पाते होंगे, अगर सरकार के स्तर पर तुलनात्मक रूप से आप कोई भी बात पब्लिक के सामने कहेंगे कि 2017 से लेकर 2026 के बीच इन 20 वर्षों के ही, या 2003 से लेकर के 2026 के बीच इन 23 वर्षों के

रिपोर्ट कार्ड को लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाइए, पहले 4 साल मुलायम सिंह जी के, अगले 5 साल मायावती जी के, अगले 5 वर्ष अखिलेश जी के, और फिर पिछले 10 वर्षों से लगभग 9 सवा 9 वर्षों से हमारी सरकार है, इन सभी को लेकर के इस रिपोर्ट कार्ड को एक बार पब्लिक के सामने आप जाएंगे तो पब्लिक से इस रिपोर्ट के बारे में संतुष्टि के लेवल के बारे में आप पूछेंगे। आज सरकार के पास नीति भी है और उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति का की नियत भी है। हमने संकल्प किया था कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, माफिया मुक्त करेंगे, कर्फ्यू मुक्त करेंगे, दंगा मुक्त करेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति थी, हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतार कर दिखाया कि हां, देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, कर्फ्यू मुक्त हो सकता है, उपद्रव से मुक्त हो सकता है और अपनी परंपरागत पहचान उत्सव से युक्त हो सकता है। ये यूपी ने करके दिखाया है 9 वर्षों में।

0: it's Harry Douglas for Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
1: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
0: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
1: They score!
0: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
2: हम जहां खड़े हैं वो मुंबई का जुहू बीच है। अक्सर जहां पर पर्यटक दिखाई देते हैं वो किसी नाले का स्वरूप ले चुका है। जुहू बीच पर आप देखेंगे कितना कचरा जो है वो मौजूद है और बीएमसी का कहना है कि लगभग 180 टन कचरा जो है वो हर रोज निकाला जा रहा है। डंपिंग ग्राउंड की जिस जैसा ये जो दृश्य है ये जुहू बीच पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर जेसीबी यूज कर इस पूरे कचरे के ढेर को हटाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे एक तरफ पर्यटकों की भीड़ है जो लोग मुंबई घूमने आए हैं, दूसरी ओर ये कचरा जो है ये उठाया जा रहा है। और उसके बाद भी आप समुद्री तट को अगर देखेंगे तो कई जो कचरा है वो अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। बीएमसी में लीडर ऑफ अपोजिशन किशोरी पेडनेकर जुहू पर आई, उनका कहना था कि पास के नालों से ये जो कचरा है ये समुद्र की तरफ आकर जुहू पर आ रहा है। जुहू में भी आप बीएमसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी विजिट हुई है, दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कचरों का ढेर जो है ये पूरी तरह से जुहू पर पड़ा हुआ है। बीएमसी के कर्मचारी दिन रात इस कचरे को यहाँ से निकालने की कोशिश में है। अगले दिन फिर से देखा जाता है कि नया कचरा जो है इस पूरे समुद्री तट पर जुहू बीच पर आ जाता है। तो अब क्या किसी नाले का कचरा आ रहा है या फिर बारिश के बाद एक तरह से ये पूरा कचरा यहाँ पर आया है, इससे पहले कभी इतना कचरा जुहू बीच पर देखा नहीं गया है।

0: कंपनी की तरफ से कि गाड़ी दिसंबर 2023 का मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन अभी जो माननीय उपभोक्ता आयोग का जजमेंट में आया है उसमें ये बताया गया है कि मेरा जो गाड़ी था वो 17 मंथ पुराना यानी जनवरी 2023 का मैन्युफैक्चरिंग था और उसमें E20 कंपेटेबल नहीं था, जिसके कारण मुझे परेशानी आई। तो जून में जब मैं गाड़ी खरीदा था मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे बस इतना पता था कि ये पेट्रोल प्लस ईवी दोनों यूज होता है। और मैं नवंबर में जब गाड़ी जस्ट चला रहा था पेट्रोल भरने के बाद, तो अचानक से बीच रास्ते में ही वहां पे डैशबोर्ड में इंजन प्रॉब्लम बताई गई, तो मैं तत्काल शोरूम में गया था। तब जाके पता चला था जब टेक्निकल टीम मुझे ये बताई कि पेट्रोल निकालने के बाद मेरे सामने ही हुआ था, पेट्रोल निकाले एक बोतल में तो नीचे एक तरल पदार्थ क्रिस्टल क्लियर लिक्विड जमा हो गया और ऊपर पेट्रोल रह गया। तो उसमें उसी समय मुझे बताया गया था कि ये प्रॉब्लम मिलावटी पेट्रोल यानी गुणवत्ताहीन पेट्रोल के कारण हुआ है, जिसमें उस टाइम में E20 या इसका जिक्र नहीं था, मुझे बस इतना बताया गया था कि गुणवत्ताहीन है। तो मैं तुरंत पेट्रोल पंप गया था और पेट्रोल पंप में भी अपना शिकायत दर्ज कराया था, लेकिन पेट्रोल पंप की तरफ से भी जो ईमेल प्राप्त हुई इसमें साफ बताया गया है कि पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस दिन जितने भी गाड़ी पेट्रोल भरे हैं उसमें किसी भी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आया, तो मेरे ही गाड़ी में क्यों प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर मुझे बहुत ही परेशानी हुआ, बहुत मेंटल हैरेसमेंट हुआ कि मैं जब एक गाड़ी रेपुटेड कंपनी मारुति सुजुकी जैसा कंपनी से खरीदा हूं और एक डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा रहा हूं और टाइम टाइम में जब सर्विसिंग कराना है गाड़ी वो भी करा रहा हूं, तो मैं ये दिक्कत ये हैरेसमेंट क्यों झेलूं। तो जब मैं कंपनी की तरफ मुड़ता था तो बोलते थे कि पेट्रोल प्रॉब्लम, जब पेट्रोल पंप की तरफ जाता था तो बोलते थे कि गाड़ी में खराबी। तो इस सिचुएशन में मेरा ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था और बार बार ये होता था कि वहां पे टैंक को खाली किया जाता था पेट्रोल सब, उसके बाद मेरे द्वारा पेट्रोल मंगाया जाता था और 60-70 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर टाइम टू टाइम ऐसे चलने के बाद गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो जाती थी, जिसका एक मेजर ये था कि फाइनेंशियल लॉस, प्रोफेशनल लॉस तथा जो फैमिली साथ में थी सेफ्टी इशू, ये सब स्टेक पे आ गए थे जी। तब जाके मैं कंपनी को भी बहुत बार मेल किया हूँ, बहुत सारे मैं
1: ये जानना चाह रही हूँ डॉक्टर देवता कि जब आप पेट्रोल भरा रहे थे अपनी गाड़ी में, क्या आपको पता था आप E20 भरा रहे हैं?
0: बिल्कुल भी मुझे ये आइडिया अभी भी नहीं है। तो नवंबर के टाइम में उस टाइम में E20 पेट्रोल था कि कौन सा पेट्रोल था, और आप देख सकते हैं कि एक कस्टमर क्या करेगा, जब पेट्रोल पंप जो लगा हुआ है वहां पे ही पेट्रोल हम लोग लेंगे, लेकिन कहीं पे ऐसे तो लिखा नहीं हुआ है कि E20 पेट्रोल है कि साधारण पेट्रोल है, कौन सा पेट्रोल है, इतना नॉलेज कोई भी कस्टमर को नहीं होता है और उस टाइम में मुझे भी नहीं था
1: और ना दिया जाता है। पेट्रोल पंप के पास अगर आप जाएं भी तो कोई बताता नहीं आपको कि कौन सा E20 है कौन सा नहीं है। इनफैक्ट मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, पेट्रोल पंप वाले बोलने लगे हैं प्रीमियम पेट्रोल लीजिए जो थोड़ा महंगा होता है उसके अंदर E20 की जगह E10 है, जो भी गलत बात है, वो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। सब में E20 उतना ही भरा हुआ है एक्सेप्ट व्हेन यू गो टू एन इंडियन ऑयल पंप एंड टू एन XP100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। बट ये स्टोरी समझने के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार के मुताबिक अब जो जितनी गाड़ियां आ रही हैं वो E20 कंपैटिबल हैं, लेकिन क्या आप कहेंगे सबसे बड़ा इशू ये है कि कितनी लाखों गाड़ियां जो E20 कंपैटिबल नहीं हैं उनको फोर्स करा जा रहा है E20 पेट्रोल लेने के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है।
0: इसमें जैसे कि एक टेक्निकल टीम या एक्सपर्ट टीम जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं इसमें कहाँ परेशानी आई, मैं जैसे ही तथ्य मेरे सामने आती थी उसी तरीके से एक ह्यूमन टेंडेंसी के तौर पे उसी तरफ मैं जा रहा था। पहली बार मुझे पेट्रोल में जैसे गुणवत्ताहीन बताया गया तथा तथ्य सामने था कि जो बोतल में नीचे तरल पदार्थ जमा हो गई थी वो तथ्य सामने था, उसी तथ्य के आधार पर मैं आगे बढ़ा। लेकिन बाद में जब बार बार ये परेशानी आई कि ऐसे तीसरा या चौथा बार में एक चौंका देने वाली चीज भी था, जब हम लोग पेट्रोल उसी टाइम में निकाले थे, ये तीसरी चौथी बार जब बंद हुआ था तो उसमें जस्ट ही पेट्रोल भरा था मैं और 10 किलोमीटर ही गाड़ी चला था, उनके सामने ही पेट्रोल भरा था, तो उसमें एक कर्ड दही जैसा चीज नीचे जमा हो गई, ऊपर पेट्रोल रह गया। तो उस टाइम में मुझे

0: भी बहुत बार ये लगा कि गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या तो हाइब्रिड जो कि वहां पे कुछ रिएक्शन हो रहा है पेट्रोल आगे जाके जो कि ये पदार्थ बन रही है, ये मेरा मानना था, पर्सनल ओपिनियन था ये मेरा।
1: कर्ड जैसा बन रहा था, तो ये किसी मैकेनिक ने आपको समझाया ऐसा क्यों हो रहा था?
0: ये सबसे बड़ा दिक्कत तो वही है, जब कस्टमर कोई गाड़ी लेता है, एक हम लोग भरोसे से लेते हैं कि कल कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं कि कंपनी या तो शोरूम जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट है वो ठीक कर देंगे। मेरे पास जब कोई मरीज भी आता है तो इसी हिसाब से आता है कि डॉक्टर साहब के पास आया हूं तो बिल्कुल ठीक कर देंगे वो परेशानी जान के। लेकिन मैं इतना भरोसा रखा था कंपनी के ऊपर, लेकिन बार बार मुझे वो हैरेसी किए हैं, बार बार मेरा मेल से मैं शिकायत दर्ज कराया हूं, लेकिन स्थायी समाधान कभी भी नहीं कर पाए। इसीलिए स्थायी समाधान जब नहीं हुआ तब जाके मैं बोला कि मुझे या तो नया गाड़ी दीजिए या तो वो गाड़ी का रिफंड करिए। तो इस बात में पूरी तरह से मुकर गए कंपनी ऑफिशियल तथा शोरूम ऑफिशियल, ये बताए मुझे कि गाड़ी नया वाला नहीं दे सकते हैं और इसका ट्रू वैल्यू में जो रेट आएगा वो रेट आपको दे सकते हैं, उसका रेट लगभग 12 लाख आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग बताए शोरूम में कि इंजन खराब हुआ पेट्रोल की वजह से और जो इंजन नया लगेगा उसमें 5,30,000 अराउंड खर्चा होगा जो मुझे देना पड़ेगा, और 5,30,000 देने के बावजूद उसके बाद भी जो इंजन लगेगा उसमें भी गारंटी नहीं रहेगा। तो इस चीजों में कैसे मतलब कस्टमर रिएक्ट करे? आप जो बता रहे हो कि इंजन तो खराब हो गया पेट्रोल की वजह से, इंजन भी लगाना है 5,30,000 दे के, लेकिन उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आगे चलेगा कि नहीं। तो इसी बात पे मैं बोला कि मैं 5,30,000 कैसे खर्चा कर सकता हूँ, मुझे गारंटी नहीं है। तो तब जाके मैं बोला था कि आप नया गाड़ी या तो इसका रिफंड कीजिए, वो साफ मना किए थे। तो मार्च 29 तक लगभग मैं बहुत बार इसमें हैरेसमेंट हुआ है, 5 से 6 बार गाड़ी बंद हुआ है। तब जाके मार्च 29, 2025 को गाड़ी वहां पे रख दिया शोरूम में, और फिर मुझे उपभोक्ता आयोग की तरफ मैं गया। और इस बीच में ऐसे भी हुआ है कि मैं व्यवस्था पूर्वक गाड़ी को वहां से लिया हूँ, लेने के लिए मना किया हूँ, लेकिन कंपनी की तरफ से शोरूम की तरफ से मुझे ये बताया गया है कि आपको लेना ही पड़ेगा व्यवस्था पूर्वक।
1: जी डॉक्टर देवता, मुझे बताइए ये सिर्फ आपकी गाड़ी के साथ हो रहा है, आपके और दोस्त हैं जिन्होंने गाड़ियां ली हैं या पुरानी गाड़ियां हैं उनमें भी ये डिफेक्ट आ रहा है?
0: एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम आया तब से मैं भी सर्च करना चालू कर दिया, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सर्च किया। तो सोशल मीडिया में जब मैं पोस्ट डाला तो बहुत जनों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया, फ्रेंड्स ने फोन भी किया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम उस टाइम में था इतना हम लोग को भी पता नहीं था कि आइडिया मतलब किस चीज की वजह से हो रही है। सबका मुझे लग रहा था कि एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम है सबका, और सबका सोल्यूशन भी इंडिविजुअलाइज्ड है, लेकिन मुझे ये आइडिया अभी भी मैं एज ए डॉक्टर उसमें जहाँ कि मुझे टेक्निकल जो चीजें हैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उसमें बताने में मुझे भी अभी कठिनाई है कि किसमें प्रॉब्लम था। इनका जो गाड़ी का पुराना गाड़ी दिए उसमें प्रॉब्लम था, या तो E20 कंपेटेबल नहीं था इसलिए प्रॉब्लम था, और जिस टाइम में पेट्रोल भरा था उस टाइम में भी E20 पेट्रोल था या नॉर्मल पेट्रोल था, ये मुझे इसमें मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी।
1: फेयर एनालिसिस सर, आप सही बात बोल रहे हैं, कहना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। पर मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर देवता, आपको कोर्ट से आपको इंसाफ मिल गया है, कोर्ट ने आपकी बात सुनी पूरी डिटेल समझी, और क्योंकि आपकी नई गाड़ी थी ये प्रूफ करना आसान था कि एक्चुअली किस वजह से ये हुआ, क्योंकि आपकी एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू गाड़ी थी, पुरानी गाड़ियों को प्रूफ करने में बहुत दिक्कत होगी। आप इस पूरी मेस का जो हुआ है किसको जिम्मेदार मानते हैं? कंपनी तो आपको अब कॉम्पनसेट करेगी क्योंकि कोर्ट ने कहा है, पर आपको लगता है इसमें सरकार का भी कोई दायित्व बनता है कि आपने उन लोगों को जिनकी E20 कंपैटिबल नहीं है कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, आपने बिना बताए E20 सारे पेट्रोल पंप में दे दिया और बिना बताए लोगों की गाड़ियां अब खराब हो रही हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का लैक है, आपको लगता है सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है?
0: सवाल ये वही खड़ा करता है अभी इस मोमेंट पे कि एक कस्टमर, एक कंज्यूमर जो बहुत मेहनत से पैसा कमा के एक गाड़ी खरीदता है अपना सुविधा के लिए, और वो जब गाड़ी प्रॉब्लम में आता है वो पेट्रोल की वजह से है कि कि गाड़ी का अंदरूनी मामला है वो तो डिबेट का विषय है, लेकिन जो गाड़ी का प्रॉब्लम होता है और जिस तरीके की सुनवाई कंपनी का मल्टीनेशनल कंपनी और इतने बड़े बड़े रेपुटेड कंपनी और शोरूम में जिस तरीके की सुनवाई हो रही है, मुझे एक समय में लग रहा था कि पैसा और पावर सब कुछ है और मुझे इसमें न्याय मिलने की संभावना कम है। और बहुत लोगों ने मुझे ये सजेस्ट भी किया ये केस मत लड़िए, आपका जो व्यस्त जीवन है और भी मुश्किलें आएगी तो आप मत लड़िए। लेकिन मैं जो अन्याय हुआ था मेरे साथ, मैं लड़ने के लिए तैयार रहा और उसमें मुझे अप्रैल के महीने से 2025 से मैं इसमें उपभोक्ता आयोग में अपील में गया और उसके बाद अभी जाके दो दिन पहले फैसला आया है।
1: जी, आपको लगता है सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए?
0: सरकार को भी इसमें मतलब बिल्कुल, जो भी कंपनी अभी ये सब कर रही है और बिल्कुल कस्टमर को एक ऐसे जगह छोड़ दे रहे हैं जहां पे उसको परेशानी के अलावा दर दर ठोकर खाने के अलावा कुछ नहीं मिल रही है, उसमें सरकार को पूरा ये मल्टीनेशनल कंपनी तथा शोरूम तथा पेट्रोल पंप इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम आदमी का जो जीवन है उसमें ये व्यर्थ ना हो।
1: ऑल राइट डॉक्टर देवता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने दाद देनी पड़ेगी, आप सही कह रहे हैं। जनरली इंडिया में लाइफ इतनी हार्ड है कि लोगों को लगता है किसी तरह से काट लो, किसी तरह से आगे बढ़ो, क्योंकि हर रोज जिंदगी इतनी टफ है। बहुत कम लोग होते हैं जो जाके कोर्ट में केस लड़ते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो लगे रहते हैं और इंसाफ मांगते हैं, और आज आपकी वजह से वो बहुत सारे लोग जो चुप बैठे हैं वो ये स्टोरी देखने के बाद उनको लगेगा कि हमारे लिए भी इंसाफ हो सकता है। और शायद सरकार को भी थोड़ा सोचना पड़े, कंपनीज को भी थोड़ा सोचना पड़े कि वो फिर से और लोगों के साथ ऐसा ना करें। तो आपकी पूरी जो आपकी इसमें फाइट रही है उसकी हम दाद देते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। We cut across also now to my colleague Sumi, who's been tracking this story very closely and joins us now from Raipur. Sumi, this case is really interesting. The first of its kind perhaps paves the way for so many more that will follow. But in this case, the entire complaint seems to be against the Maruti company and the dealership, who did not give him, perhaps, from what he's saying, the model that they asked for. This does not mean that anyone who goes with an E20 compatible facing issues will get the same compensation. This is a very nuanced, one of its kind case. Is that true?
2: Yes, absolutely. In fact, back in 2024, when he bought the vehicle, in the guarantee period, it was till 2029. However, the vehicle ended up giving all sorts of damages before it could complete 25,000 kilometers. And in fact, the guarantee has been given up till 1 lakh kilometers. And within 5 months of purchasing, the vehicle already had recurring damages. And in fact, repeated visits to the showrooms, authorized workshops, and nothing helped. The problem still persisted. It is certainly one of its kind where the entire behavior of the showroom people as well as of the company, of the manufacturer, has now raised questions over the E20 claims. And the consumer also pointed out that the manufacturers had claimed that this particular vehicle belonged to the manufacturing date up till 2024, the year when he was actually buying it. However, the reality was something different. It was not dated December 2024, but the manufacturing was back in January 2024. So he was handed over an old vehicle by giving a wrong claim. And in fact, this particular false claim now is costing very steeply to the manufacturer as well. And this particular consumer court that we are talking about has given one of its kind judgment on it, but it has also mentioned that it does not in a blanket manner consider the E20 or declare the E20 blended petrol as unsafe for all vehicles from that particular brand. However, it is a one-off case, and it certainly encourages consumers with similar problems to now approach consumer courts of their respective districts and to get compensated for this ill behavior by the manufacturer as well, and by the lack of deficiency in that entire case.
1: Right, but Sumi, there are two things here. I want to understand, how is Maruti responding? How is Maruti responding to this whole fiasco? Because Maruti will say that, well, we did not mandate E20 to be the only fuel available. That's the government.
2: Yes, absolutely. We ended up first approaching the showroom people who were in the eye of the storm. And in fact, when we went there, we were told that they were not authorized to give an official word on the entire verdict. And till afternoon, till today, till this afternoon, they had not received any verdict. They have not received any communication from their higher-ups as well about this whole verdict. So they had also asked us to contact the Maruti company people who are there in Delhi. But this entire verdict has certainly raised questions about their own behavior, because the consumer kept on complaining how he was harassed time and again, and how he was asked to give his vehicle and submit his vehicle every now and then. And the Maruti, the vehicle, the manufacturer also refused to settle down this entire matter by compensating the consumer at first. In fact, the entire claim by the lawyer has been made of 50 lakh. However, the consumer court has now brought down that amount to 20 lakh, of which at which the consumer bought this vehicle initially, including the registration and all sorts of on-road properties that the car comes up with. So this entire harassment is certainly costing very steeply to the manufacturers, but this entire case has certainly put a lot of flashlight on the kind of behavior that the consumer was meted out with. So that needs to be taken into consideration by every manufacturer, and this particular case needs to be taken as an example as to how a consumer needs to be dealt with.
1: Right, but also, you know, this was a brand new car. And this was a persistent consumer. He was very righteous in his approach, fought it for years, and finally he's got justice. So clearly tells you that the case for E20 has been, that's another headline, right? It's not just about the past 2 years. It's going on from 24 when he bought his car. So that's a long story. And that's what we really need to cover in different angles and different aspects of this case. But indeed, the first win for a consumer. Let's see how other courts and other complaints are responded upon. For the moment, thanks for me for joining us. But staying with E20, while on one hand the court says that it indeed was the fault of the manufacturer in this case for not disclosing, and then there was indeed damage, there is a story coming up completely on the flip side from IIT Kanpur. IIT Kanpur, where researchers are conducting an advanced, what they call as an engine test on E20 petrol. Scientists simulate real-world driving conditions. Every parameter from fuel efficiency to engine performance is closely monitored. Scientists also, we are told, inspected the engine components and fuel systems for corrosion, carbon deposits and the wear and tear. And according to IIT Kanpur researchers, the extensive testing found no evidence that E20 damages engines or causes abnormal performance. So what are we to believe? Real-life experiences on ground by people, or what IIT Kanpur is saying right now? The choice is yours.
3: The fuel consumption meter that shows that if E20 petrol is taking a lot of, emitting petrol or taking a lot of petrol, then it shows in this very particular reading. I'll request my camera person to show you in the visuals. The reading is showing 3.46 something kg per hour. Yes. I just want to ask you that even if normal petrol is poured in this very... The fuel consumption meter that shows that if E20 petrol is taking a lot of, emitting petrol or taking a lot of petrol, then it shows in this very particular reading. Yes. I'll request my camera person to show you in the visuals. The reading is showing 3.46 something kg per hour. Yes. I just want to ask you that even if normal petrol is poured in this very...
4: Stops the engine, try to stop the engine, and depending upon the how much stopping power is applied.
3: External factors that affects the performance of the car that has been created here artificially, and you are monitoring the whole system here. Amid an ongoing controversy regarding the usage of E20 petrol nationwide, IIT Kanpur studies shows, after extensive research, that E20 petrol has no effect on fuel efficiency and no effect on the damages in engines of even older cars. Well, right now, I'm standing inside IIT Kanpur campus in the laboratory where this whole research and practical happened. Well, you can have a look. There are some big machines which are used to make an atmosphere identical of a car. External factors are being monitored through the form of machines, after which has come to a conclusion that no effect of E20 petrol is on the cars, on its fuel efficiency and on the engines. Well, this is a BS6 engine which is placed here, which is normally used in cars.

0: This is connected to a fuel tank from where E20 petrol is poured in this very particular engine. And after that, through the help of the external factors, machines, each and every minute factor is monitored here.
1: All right, moving on. From celebration of life to the desperate fight for survival, 12 women fell critically ill after childbirth at a government hospital in Kota. We've been bringing you these stories every day now for the past several weeks. 5 dead, 2 were discharged, 5 are still battling for a kidney failure. Nearly 70 days after undergoing the cesarean deliveries, these 5 new mothers remain on dialysis every day. And now, after 48-hour ultimatum to the administration brought no assurance, they have refused to take the dialysis, demanding that you either give us a kidney transplant or give us the permission to die. Permission for euthanasia. That's how desperate the situation is. The women and their families allege that hospital negligence and the use of alleged spurious medicines led to this condition. The hospital, of course, has denied all these charges, saying that women are medically stable, dialysis remains essential, and it is too early to decide on kidney transplant. But what exactly is happening? These are desperate, poor women. The same hospital which took away the life of so many others has put these at risk as well. And now they are saying, we'd rather die than take dialysis every day.
2: Five women suffered severe kidney damage after a cesarean operation at a government hospital in Kota, Rajasthan in May. For nearly 70 days, these new mothers have fought just to stay alive. Today, they say they no longer want treatment. After a 48-hour ultimatum to the administration brought no assurances, they are now refusing dialysis.
3: अभी तक हमें यह भी पता नहीं है मतलब ना तो हमारी बायोप्सी करवाई जा रही है अभी तक कुछ करवाई भी नहीं जा रही हम तो बस यही चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा दे हम जैसे आए थे वैसे हमें घर भेज दे हमारे बच्चों के पास भेज दे
2: Their families have made one desperate plea either arrange a kidney transplant or permit euthanasia They allege that kidney failure followed childbirth. They blame it on hospital negligence and allegedly spurious medicines.
4: हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके आए थे 48 घंटे का अल्टीमेट पूरा हो चुका है अभी तक कोई उनकी तरफ से ना तो कोई सूचना या कुछ उन्होंने हकीम से पूछा नहीं हमारा ज्ञापन तो जैसे रद्दी में रख दिया उन्होंने हम यहाँ आके हमें आश्वासन तो देख उस चीज का भाई आगे क्या कर रहे हैं कब तक करवाएंगे ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसेस है तो किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं
2: डॉक्टर्स इंसिस्ट द वुमेन आर मेडिकली स्टेबल दे से डायलिसिस रिमेन्स इसेंशियल एंड इट इज टू अर्ली टू डिसाइड वेदर द पेशेंट्स रिक्वायर अ किडनी ट्रांसप्लांट
5: देखिए जो पांचों प्रसूताएं भर्ती हैं वो पूरी तरह से स्टेबल है उनका डायलिसिस आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है वो कब तक करना पड़ेगा ये कहना एक चिकित्सक के लिए संभव नहीं है जब तक किडनी उनकी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती है तब तक हमारे को किडनी को सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस करना आवश्यक है हमें कोई आपत्ति नहीं है हमने उनको भर्ती रखा हुआ है डायलिसिस उनके लिए आवश्यक है जब तक कि किडनी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती
2: फाइव मदर्स गॉट बिटवीन होप एंड डिस्पेयर देयर सफरिंग हैज नाउ बिकम अ पेनफुल रिमाइंडर दैट राजस्थान्स

0: healthcare crisis cannot be measured only in statistics, but in families left shattered after childbirth. With Sharad Kumar and Chetan Gurjar, Bureau Report, India Today.
1: And a major development coming in on that story. We are told that the postpartum women agree to the dialysis, preparing for kidney transplant, is now. Preparations for that is underway. After a prolonged standoff, the women have finally agreed to undergo dialysis again. We are told that the city ADM Vinod Malhotra and Dr. Nilesh Jain held detailed discussions with the family. But we are told that the transplant can take place. Women must complete a mandatory 90-day medical protocol. Additionally, the families will be responsible for arranging the kidney donor here. And for now, the administration and the medical team are closely monitoring the entire situation. What exactly is going on there? Let me cut across to Sharad over there. Sharad, तो सरकार ने बात तो मान ली है, उनको बोला है आपका किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे, उसका खर्चा कौन उठाएगा ये बताइए।
2: ये खर्चा उठाने के लिए भी सोनल सरकार तैयार हो गई है। जिस तरह से महिलाओं ने जिद पकड़ लिया था कि 70 दिन हो गए और डायलिसिस के लिए हर एक दूसरे दिन बाद आना पड़ता है, अपने खर्चे से आना पड़ता है, अपने संसाधन से आना पड़ता है, क्योंकि सरकार का कहना है कि आप ठीक हैं, आप घर रहे हैं, अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। उसे लेकर उन्होंने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी थी इच्छा मृत्यु के लिए, और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सभी 5 महिलाओं और उनके परिजनों से आज प्रशासन ने बात किया है। इनका कहना था कि कल तक हम कलेक्टर के पास जा रहे थे तो हमारे एप्लीकेशन को रद्दी में फेंक दिया जा रहा था, मगर आज सुना गया है। हंगामे के बाद उन्होंने डायलिसिस कराने से मना कर दिया। उसके बाद उसमें तय हुआ है कि हम आने जाने का खर्चा भी उठाएंगे, आपके किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा भी उठाएंगे, आपको अपने किसी रिश्तेदार से किडनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और 90 दिन का जो मैंडेटरी कोर्स होता है मेडिसिन का, वो उसे पूरा करना पड़ेगा। इनका कहना है 70 दिन तो वैसे भी हमारे हो गए, 20 दिन बाकी हैं, तो दवाइयों का प्रोटोकॉल शुरू किया जाएगा, ये समझौता हुआ है, उसके तहत ये 5 महिलाएं मान गई हैं। लेकिन देखिए, समस्या है कि ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब ये मीटिंग हो रही थी, जब समझौता हो रहा था, तो ठीक उसी वक्त एक गर्भवती महिला के साथ यही हुआ, सिजेरियन डिलीवरी आज हुई और आज ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और यूरिन जो है उसका पास होना बंद हो गया है, उसको फिर से ओटी में लेके जाना पड़ा है। तो हो सकता है कि ये स्थिति आती है, एक दो महिलाओं के साथ हो जाए तो समझ में आ सकता है, यहाँ 10 महिलाओं के साथ
1: हुआ हो रहा है। That is why it is a question. फिलहाल के लिए शरद, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ कि कम से कम इन महिलाओं की बात सुनी गई। We are happy to do our job over here to ensure that those who are wanting to die till yesterday have given life another choice, have given life another chance now. And the government is saying they will be paying in for their kidney transplant, but it's not done yet. We'll keep ensuring that it actually goes through and we'll follow the story. But moving on the other story we've been tracking, the NEET examination. The re-NEET examination may be over, but the questions surrounding the alleged paper leak are far from settled. In fresh submissions before the special court, the CBI has now laid out what it calls crucial evidence pointing out to an insider leak involving the NTA paper setter. The CBI made some explosive claims alleging that the NTA insider leaked chemistry questions well before the exam. It is a detailed report that has been submitted which talks about how a Latur coaching center owner had about 5 lakh rupees that were given in as bribe to an NTA official, part of the paper setting panel, and he ended up disclosing 111 of the 132 papers. He's actually got it in handwritten. Some 36 images have also been taken out of that and then circulated moreover. So a clear first-hand leak from the NTA person has been established. Let's understand what this will mean for NTA. My colleague Shishti Ojha now joins us for more on this story. Now, Shishti, take us through, what does this mean? Who all are in the web? Is this the first time that a clear NTA involvement has been found?
3: Well, yes, Nonal, a total of 13 accused were arrested in this case. All of them are presently in judicial custody. One of the accused, as you pointed out, who owns Shivraj

क्या ये सच में माइक्रोप्लास्टिक कम करता है? अगर आप के पॉप या के ड्रामा के फैन है तो शायद आपको ये बात ऑलरेडी पता है, बाकियों को बता देते हैं। इंटरनेट में इस समय वायरल हो रही है कि

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: फ्रेंच परफ्यूम्स बाय चोगा, अ फ्रेग्रेंस दैट लास्ट लॉन्गर देन 10 आवर्स, सो आई कैन बी मायसेल्फ अ लिटिल मोर। फ्रेंच परफ्यूम्स बाय चोगा, फॉर हिम एंड हर।
6: वी आर ओवर जिमी।
7: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: veteran Saifuddin Soz has reignited it. Calling for the restoration of Article 370, the former union minister has urged Kashmiris to fight for the return of the region's special status.
1: Koi Jammu Kashmir riyasat ko union territory nahi bana sakta, ye temporary cheez hai. Hamara asal masla andruni dakhli khud mukhtari hai aur Jammu Kashmir ke logon ko 370 ki bahali ke liye ladna chahiye. Kabhi kabhi aapas mein ye baat karte hain winda din ki, ye galat lafz hai naujawanon ke liye.
0: The comments have drawn a sharp response from the BJP, which has termed them yet another Congress toolkit. Linking the timing of Soz's remark to Rahul Gandhi's return to the country, the BJP has accused the Congress.
2: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी अपने चिरपरिचित शैली में संदिग्ध विदेशी अज्ञातवास से वापस आए और कोई भारत विरोधी बयान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर उनके चरण भारत की पवित्र धरती पर पड़े और उनके पार्टी के एक नेता के द्वारा अत्यंत ही निंदनीय राष्ट्र विरोधी अपवित्र बयान सामने आया. मामला सिर्फ धारा 370 को बहाल करने का नहीं है, बल्कि उन्होंने शब्द प्रयोग किया जो उर्दू में मैं रिपीट कर देना चाहता हूं, मामला दाखिली खुदमुख्तारी का है.
3: सैफुद्दीन सोज साहब ने जिस प्रकार से धारा 370 और 35A की वकालत की है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के इशारों पर नाचना शुरू कर चुकी है. कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर एक्सपोज हुआ है. कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रद्रोह किया है.
0: The Congress leadership has so far not officially distanced itself from Soz's remarks. Instead, some party leaders have defended his views. Ally NC, which is in power in Jammu and Kashmir, is also backing the call.
4: जम्मू कश्मीर के किसी भी आदमी को 370 से कोई वो नहीं है, शिकायत नहीं है. 370 चाहते हैं वो, इवन बीजेपी के अंदर जो लोग हैं वो भी चाहते हैं, मगर वो डर की वजह से नहीं बोल रहे हैं. पहले स्टेटहुड आ जाए, उसके बाद 370 और 35A की बात की जा सकती है. स्टेटहुड के लिए इसलिए पहले आ जाए क्योंकि उनका उसका जो प्रॉमिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है, बाकी की चीज़ें और डायलॉग से भी हो सकती हैं.
5: क्योंकि कश्मीर का जो मसला है या कश्मीर राज्य जो है वो बहुत सेंसिटिव है और वहाँ किसी ऐसी तरह इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए जिससे वहाँ के लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा हो या उनको लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है.
0: Nearly 7 years after Article 370 was revoked and after the Supreme Court upheld the centre's decision, the Congress finds itself confronting uncomfortable questions over its Kashmir narrative.
6: By raising the bogey of Article 370 and autonomy, veteran Congress leader Saifuddin Soz has caused massive embarrassment to his party. The Congress may have distanced itself from the controversial remarks of Saifuddin Soz, but the BJP has got enough ammunition to target the Congress party. With video journalist Tilak Raj Sharma, this is Sunil Bhatt reporting from Jammu for India Today.
7: Is Dakhli Khudmukhtari, as Saifuddin Soz puts it, or autonomy more important than safety, security, stability, development, and an aspect that's not often talked about? Scheduled castes and tribes getting their due finally in Jammu and Kashmir post-370, post the 5th of August 2019. And why this special emphasis on Muslim majority J&K? Why push youth in J&K back into this cycle of perpetual turmoil instead of focusing, looking ahead towards development and progress? Look at what's happening across the border, across the line of control in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And I want to, for a moment, play out images of what's happening in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. 8 people were killed by Pakistani security forces. The place is up in arms. Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, they have no food, they have no water, they have no medicines, they have no education, they have no healthcare. There are 80,000 people on the streets of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And they're talking about, look at development in India. They're talking about, look at what's happening in